सतसंग जाए कर चित डुलावे, हर जस सुनते बात चुलावे, निरतन देख ना पास बहावे, सोतन खाई मूल कहावे, कथा कीर्तन में मन नहलावे, संत

तिस का कछ ना बसाए, आप सिंह जो राजा होई, आप सिंह जो राजा होई, निर्धन सिंघन पाले सोई। करमो साध सिंह जो आई, तिनकी बहुविध सेव कराई,

तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, जस नीच को कोई न जाने, नाम जप तो चौकुंट माने, सुख टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, सोरठ महला पंजवां, जित पार ब्रह्म जित आया, सो कर दिए वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा सगल मिटाया, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दिए वसाया, सुख सागर गुर

तरण मित्र न भरम न पितर न कर्म न काय जन्म गजाय न चित्र मित्र परिह पवित्र प्रति सह दिश दृश कृश भगवती संतो प्रसाद कहते कि आशीष देसा के आपच भेसा के आंगज कर्म के आपज भरम के आपच लोक के आदत सोख के आदत वर्ण है के विभूत कारण के राज ब्रह्म धर्म तो जय के आशुक वर्ण के सर्वा भरण के जगत ग्रतियंग छत्रंग छत्रिंग ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव रूप के आदि देव के आप भेवंग छतंग विहीन के एकाधीन के रुचि रिजाकारी महारिहाक पाप पा के पाक वै भंग बल गै भ के आप बल गुनाह के शाहन शाह के कारण कुनंद के रुचि दहंद के राज करीम कर्म करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र भावना है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परम भीम है के आकुल अलाम है के साहिब कलाम है हरिफल जी मर जाय कुन निकल त्रांग भेद भांग जल निवाज गानी मुल्क राजन रक्त स्वरूप है त्रमुक्त भूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है समस्त सलाम है सदैव काम बास रूप है गाध अनूप है अंगात रूप नाश रूप है नंगी अनामे तरपंगी तरकामे तरवर्ग दरबाधे गंजे गाधे सुभंग सर्वभाग्य सर्वानुरागे तरभुग स्वरूप है शय शूतंग नरकंग प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है नरक्त प्रभा सदा वंग सदा है भोग स्वरूप प्रजोक्त अनूप है निरुक् सदा है भुक्त प्रभा अनुक्त स्वरूप प्रजुक्त अनूप चात्री छंद भांग नंग भेक लेख भरम कर्म नद जुगाद जय बह भूत दूत नाश उदास तंद बंद भक्त भ्रगत नाश प्रकाशन चंद सुनंत लेख देख लेख भेख टह गह संभ गम नील नाद नत सुनत जात जात चरपट छंद प्रसाद सर्वंगता सर्वंगता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हरता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं तरांग सर्वं कर्मंग सर्वं तर्मंग सर्वं जुक्ता सर्वं मुक्ता रसावल चंदो प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूपे भंगंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगा स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी नामे तरभंगी तरकाम निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रण पुत्रण सत्रण मित्रण तातन मातन जातन पाता साकं श्री कमितो मी कसदैव प्रभा है जय है अजाह भगवती संदो प्रसाद के जाहर जूहर के हाजर हजूर है मिश्र सलाम है समस्त कलाम साहिब दिमाग है कुशल चराग कामल करीम के राज करीम के रोजी दहन के राज करहन दे करी मुल्क मालिक कुशल जमाल गनी मुल्क राज गरीब नवाज हरि पुरुष कान रासुल कान कलंक प्रणाश समस्त निवास गंजन गनीम रजाय करीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब करांग नरकंग प्रणाश है बहस्तुल निवास के सर्वल गोबर है मे सर्वान तमाम तमीज है समस्तल अजीज है परम परमीश है समस्तल अधीस है देसल लेखा है मिसल भेख है जमीन जमा है कोली मैं करीम कमाल है जरूरत जमाल है के चलंग प्रकाश मितो सुबाल सिंह अजब स्वरूप है कि मितो भूत है मितो पसंग के आतंक प्रभ है कि चलंग नंग के मितो अभंग मत भार संतो प्रसाद मन मन पर नाम गुण गण मुदाम पर गांज हर नर पर भाजन गण पर नाम मन मन सलाम हर नर खंड भर नर मन भवनाश मन मन प्रकाश गुण गण पर नाम जल थल मुदाम मन से जांग आसन भंग उपमा पार गत मृदुदार जल थल मन दस विस भण जल थल मन दस विस बे आंदन भवनाश उतर तुरा सुहा जान बाहु विकस दाहु ओंकार आदि गति नाद खल खंड ख्याल गुर भर अकाल हर कर प्रणाम चरण नाम अंश जगात अजना बात अंश जगात अंज बात अंट भंडार अंठ पारा डीठ धर्म तीठ कर मन बरण अनंत दाता महंत हर बोल मना संतो प्रसाद करुणालय है हर काल्य है कल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास सर्वनाश है कुरुणा कर है विसंग पर है
सर्वेश्वर हैं जगतीश्वर हैं ब्रह्मंड सह खल खंड सह परते पर हैं करुणा करं जपा जापा था।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी तुद डिठी सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह शाहो जिस पास बैठिया सोई है।

पूरा नानक सतगुरु ता मिलै जा मन रहे हदूर पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नामखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे ते आवो जी जंत हर सारंग पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन हो कुरबाणा तू आपे आप वरतदा कर जोज बिड़ा।

जिन्ना नानक सच पछाणिया जे सच रलेत सलोक महला तीजा। कलम जलो सन मसवाणीए कागद पी जल डाओ लिखण वाला जल बलो जन लिखिया दूजा पहाओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवन न करना जाए महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हुई खुआर पौड़ी। हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जान न्याओ है धर्म का। हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनिए कहया चुगल का। हर की वड्याई वड्डी है अब पुछिया दान देव का सलोक महला तीजा। हौ हौ करती सब मुई संपो किसे ना नाल दूजे पाए दुख पाया सब जो ही जमकाल नान गुरम उबरे साचा नाम समाल महला।

तू आपे कमल अलिपत है से हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुदहों बाहर किश नहीं गुर शब्द।

जे तन कसमे चले रजाई, दर कर सोभा महल बुलाई। नान करमी ए मत पाई, गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा, मनमुख ना विहुनिया, रंग कसंबा देख ना भुल। इसका रंग दिन थोड़िया, शोषा इसका मल। दूजे लगे पचमे मूर्ख अंधगवारू, बिष्टा अंदर कीट से पए पचहे वारू। वाह नानक ना व्रते से रंगले, गुर के सह सुभाए। भक्ति रंग ना उतरे, सहजे रह समाए। पौड़ी सिस्ट पाई, सब तुद आपे संभाहिया। एक वाल शाल करके खाम दे मोह, कुड़क सत्तन ढाहिया। तिनी ढाहिया तुद आपे, भावे सुकरै तुद उत्ते कम उहिलाया। इक ना सच बुझाया, न तिना अतुट भंडार दवाया। हर चेत खा हे तिना सफल है, अचेता हथ तड़ाया। श्लोक महला तीजा, पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाड़े। माया मोह सो आए, दूजे पाए हर नाम विसारिया। मनमुख मन मूर्ख मिले सजाए, जियो पिंड जियो जिन जियो पिंड दिता। तिस कबू न चेते, जो देंदा रिजक सवाहे। जम का फाहा गलो न कट्टी है, फिर आवे जाए। मनमुख कृष्ण सूझी अंदले, पूर्व लिखिया कमाए। पूरे भाग सतगुरु मिले, सुखदाता नाम सिमनियाए। सुखवाणी सुख पहनना, सुखे सुख विहाय। नांग सो नाम मनो नाम विसारी है, जिदर सच्चे सोभा पाए। महला तीजा, सत गुरु सेव सुख पाया। सत नाम गुणता, सुगुरु तिया पछाणिया। राम नाम प्रगा, सचु सच कमावना। वड्याई वड्डी पास, युगण सब तिस्का सुत करी अरदास। सच्चे सुख सलाहना, सुखे सुख निवास। जप तप संजम मन मने माहे, बिन नामे त्रिक जीवास। गुरमुक्ति नौ पाईए, गुरमुख मुहि विनाश। जो भावे तू राख, तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा

भगत कबीर जीयो का चर जेक सुन रे पंडिया किश कह न जाई सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रिपौण मेख लीलाई राजा राम नद किंगरी बाजा जाकी दिष्ट नाद लिवला गहरा हो पाठी गगन सिंह यार चुंगिया कनकले खलस एक पाया तिस मैं धार चुआ अत निर्मल रस मैं रसन रचुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजे आतीन पवन मैं एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसा ज्ञान प्रगट प्रगटया परखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनिया सब परम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी भक्त बेणी जियो की पहरिया क्या घर गावना क्यों कारू सतगुरु प्रसाद रे नर गर्भ कुंडल जब आशत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मदना एनस एक अज्ञान सुनागा ते दिन

आई। हर जियो कृपा करो गुरु मेलो, जन नानक हर धन पल्लै जियो माज महला चौथा।

मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दस्सै हर नर हरिया जियो मेरी बेदन हर गुरपुरा जाने हो रह न सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दीजै गुरपुरा मैं हर हर नाम उधरिया जियो हम चात्रक दीन सतगुर सरनाई हर हर नाम बूध मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिया जियो माज महला चौथा।

मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन भावै मिल सतगुरु अमृत पीजै जियो वडभागी हर संगत पावै भागहीन परम झोटा खावै बिन भागा सत्संग न लब्बै बिन संगत मैल फरीजै जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर नाम दया मन धारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक ना मन भीजै जियो माज महला जवता हर गुण ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुखार हर बोली मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो

संतो गुर अनुभव पुरुख दिखारे आजियो आपे राजने आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा आपे तख्त बैस जिन्हें आई सब चूकी कूक पुकार जियो जे हा डिठा मैं ते हो कहे तिसरा से आया जिन भेद लहे आ ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जिन नानक एक पसारे जियो माज महला पंजवा जित कर फिर सुहाग बनाया जित कर सखिए मंगल गाय अनंत बिनोत तै कर जो सो है जो धन कंत सिगारी जियो सागुणवंती सावड भागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण रूप वंशा सुगड़ विचखण जो धन कंत प्यारी जियो अचार वंत साई प्रधान सब सिंगार बने तस ज्ञाने सा कुलवंती सा सभराई जो पिरकै।

दर्शन तेरे भवन पुनीता आत्म गढ़ बिकम तनाही जीता तुम दाते तुम पुरख विदाते तुझिए वड़िया वरना सूरा जियो। रेण संतन की मेरा मुख लागी दुर्मत बिनसी कबोदा भागी सच कर बैस रहे।

आस मनोरथ पूरण होवे भेटत गुर दरसाया जी। अगम गोचर किश्मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावै ज्ञानी, खुदी मिटी चूका भुलावा, गुरमा नहीं मैं प्रगटाया जी। अणद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम मखाना, होए कृपाल स्वामी अपना नाउ नानक घर में आया जीओ। माज महला पंजवा, सुन संजीवा, सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकुर अत भारी, तुमरे करतब तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जीओ। गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मन सगली खोवै, भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभु अपना सा सा समारवे, मत गुर प्रसाद मन तारो, तुमरी कृपा देव प्रगासा, सर्व माया प्रतपाला जियो।

भय कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वर्षा सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठाठ पाई करतारे जियो अपने जी जंत ब्रत पारे जो बारक माता संहारे दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल मैयल जल थल पूरया मेहरबाना सतबलिहार जाई कुरबाना रहन दिन तिस सदा त्याई जेखिन मैं सगल उधारे जियो।

पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल तल मई जल दह दिस वरसाया शांत पई बुझी सब दिशना अणत पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख भंजन हारा आपे बख्श।

हाँ बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो तुन रवैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरे कलमल। नानक नाम त्याए त्याए जीवै, बिनस्या परम पौ तीठा जियो। माज महला पंजवां।

तन मन खोजै तनाउ पाए तापत राखे ठाकर हाए गुरु की बाणी अंदन गावै सहजे भगत ग्रामण आसकाय अंदर वस्त संखा गुरमुख सच मिले ता वेखा नौंदर वाजे दसवें मुक्ता अनद शब्द बजावणे आ सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरप्रसादी मन वसाई अंदन सदा रह रंगराता।

हम जो सच लागे से अंधन जागे दर सच्चे सोभा पावणे रहाउ। आप सुना तय आपे वेख्या सुनो नदर करे सोई जन लेख्या आपे लाए लए सो लागे गुरमुख सच कमावणे जस आप लाए सो कितो हथ पाए पुरब लिखिया सो मेटना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वड़ भागी गुरपुर।

राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सत गुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहू हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहू हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजी शब्द कनेरी कह नानक सच्ची साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईयां कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईयां सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां इह वड्डे आईयां कह नानक सुनहो संतो शब्द धरो प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे

सुमंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करहो किस मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे जीअड़ अगन बराबर तप पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सोख होवै दिन राती।

सूरठ महला पंजवा। सुखिए को पेखे सब सुखिया, रोगी कै भाण सब रोगी। करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना भरम गवाता, तिस कै भाणे कोय न भूला। जिन सगलो ब्रह्म पछाता, रहाओ संत संग जाका मन शीतल। ओ जाने सगली ठांडी, हों मैं रोग जाका मन व्यापत। ओ जन्म मरे बिल लाती, ज्ञान अंजन जाका नेत्री। पढ़िया ताको सर्व प्रगासा, अज्ञान अंधेर सूजत नाही। बहुड़ बहुड़ परमाता।

सुरठ महला पंजवा चरण कमल सेव जाका मन लीना से जान तृप्त गाई गुण अमोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्ण तिखाई। हर आराधे अरोग नंदाई, हर आराधे अरोग नंदाई, जिसको विसरे मेरा राम स्नेही तिस लाख वेदन जने आई रहाओ। जिन जान जह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरणे, जह नर बिसरिया पुरख विधाते ते दुखिया मैं गणने, जे गुरमान प्रभ लिव लाई तिन महा आनंद रस किया, जय प्रभु बिसार जय प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया, जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वर्तारा, नानक शाय नानक सह पकरी संतन की हृदय पहे मगन चरनारा। सूरठ महला पंजमा राजन मैं राजा उर्जायो मानन मैं अभिमानी, लोभन मैं लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी, हर जन को एही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्ता वै रहा। अमलन सिंह अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी, खीर संग बारिक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी, विद्या में अस विद्या में विद अंसी रचिया नैन देख सुख पावे, जैसे रसना साध लुमानी त्यों हर जन हर गुण गावे, जैसी भूख है जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलया अंतर जामी। सूरठ महला पंजमा हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा रहाओ, तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान दियो मेरवाना, तुम करहो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला तुम निदान टल सुल्तान जी जन सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे। सूरठ महला पंजवा घर दूजा मात ग्रह मैं अपन सिमरन दे तै तुम रखन हारे, पावक सागर था लहर मैं तारो तारण हारे, माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तोरा, रहाओ किते को मेरे सम्माने करण हार तृण जाने, तू दाता मांगण को सगली दान दे प्रपाने, खिन मैं अवर खिने मैं अवरा अचर्ज चलत तुम्हारे, रूडो गुडो गहर गंभीरो उच्चो अगम पारे, साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सूरठ महला पंजवा हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाए एहु मन तेरा भाई रहा। संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी ता उतरिया मन का तुखा, धर्म राय अब कहा करेगो जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद पहे सुख पाया संतन के प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिस्मा दे। सूरठ महला पंजमा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छाड़ जानी, जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी, राम नाम संग कर व्योहारा पावे पद निर्वाणी, प्यारे तू मेरो सुखदाता गुरपुरे दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना ता मैं सुख नहीं पाईए, हो रेण तू सगल की मेरे मन तौ आनंद मंगल सुख पाईए, काल ना पाले काल ना पाने अंतर बिद जाने ताकि कर मन सेवा।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की

प्रगट पुरख परवाह सब ठाई जानी है। दिन रैन अराद समाले साह साह नानक की लोचा पू सच्चे पातशाह समाले साह साह समाले

कानड़ा कानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रिय प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।

समर्थ गुरु सिर हाथ तरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अघन हरियो, निस्बासर एक समान त्यां, सो नाम सुने सुत पान, पंदा सो आस जगतर गुरु की, पार्स पेट पार्स करियो, रामदास गुरु हर सत कियो, सम्राट गुरु।

माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्त वंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो एव तथ ताहे कहा परवाह काहू की जाके बसीस

संतन के पाछे मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद पाया प्रभ आवत सुनिया। धन गुरु अर्जुन देव।

कारीगर कारीगरा कारखाने विच जाए मिलन दे अपने अपने वर्ण विच चार वर्ण कुल धर्म तरन दे अपने अपने साहिब चाकर जाए जुहार जुड़न दे अपने अपने खेत विच बियो सदा किरसान विजन दे साध संगत गुरसिख पूजन दे साध संगत गुरसिख पूजन दे अमली रचन अमलियां।

दिन संगती सब ऐसे रहे जैसे पसटोर, जिनकी तत से ना जाननी बिन नावे सब चोर, बिन भागा सतसंग ना लबे बिन संगत मैल भरी जय जियो, वड भागी हर संगत पावे भागहीन भ्रम चोटा खावे, बिन भागा सतसंग ना लबे बिन संगत मैल भरी जय जियो। बिन संगती सब ऐसे रहें

दर्शन भेट तहत आनंदा, दुख गया हर गाये, हर रस पीवो भाई, हर रस पीवो भाई, नाम जपो नाम।

मिल सत संगत खोज दसाई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर

मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल।

कल घोर समुंदर में बूडत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार जह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जग तारन को अवतार।

हो संसार है, जन्म मरण विच दुख सवाया, जम दंड सिरो न उतरे, दुर्जन साकत दुर्जन

हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़िए भारद्रोही ठग माया राम वड़ पागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए गुर पूरे गत मित पाया राम गुर अमृत हर